श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हूँ?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।

रोज रोज रोज रोज रोज

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like किशोर but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल,
1: तू है बुलबुल,
0: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल,
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले, छम छम छम छम छम छम छम, एक गण हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

तो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे आ बंजरों का

उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना।

माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई, आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: गोगा। ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के एक बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, पर अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र

0: पतझर सावन बसंत बहार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बेटी कहाँ से ले दूँ?
1: नंगे पाँव मेरे कोई चोट नहीं है, इधर तो देखो दादी मेरी तक नहीं है। सुबह से

जब तक

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

सत्याकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज स्टार थीम चॉइस। और आज के जो थीम के शब्द हैं, घर, उसके बाद है मकान और बंगला, महल, दरवाजा और खिड़की और कमरा, झरोखा, आंगन और अंगना, गली, मोहल्ला, गांव और शहर। इन शब्दों को दिए हैं हमारे आदरणीय अशोक देशमुख जी। अशोक देशमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे शब्द देने के लिए। और इन शब्द पे एक से बढ़कर एक गाने की डिमांड मेरे पास आ भी चुकी है, और आप चाहे तो भेज सकते हैं लाइव शो के ड्यूरिंग में। फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने, क्यों है ना।

बिल्कुल घर नहीं जाएंगे, कहीं और चलेंगे। फिलहाल बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह जुड़ने वाले हमारे यानी कि सरफू भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत भाई वेलकम है आपका भी, मुबारक हुसैन जी। और जुड़ने वाले बबीता देवी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी बबीता जी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कौन कौन से हैं, ये हैं हमारे मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मंगेश देशमुख जी। इधर आप फरमाइश मत किया करें, आप सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजा करें प्लीज, क्योंकि सॉन्ग रिक्वेस्ट से भेजिएगा तो मुझे वहाँ दिखेगा। और वैसे बहुत से दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज तभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वहीं पर भेजा करें, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, चूंकि मुझे रहेगा याद। और सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वेश भगत जी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं सर्वजीत सेठी जी। आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी आत्माराम पाटिल जी। और काजल झका जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी काजल झका जी, कोशिश कीजिए वहाँ मैसेज करने के लिए। और आरिफ सिंधी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ गजानन सुलकार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और राधाकृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ये मिसालंगा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ यहाँ शिल्पा बेन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, आज तो बिल्कुल ये टाइम से जुड़ी हुई है। और निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। और हमारी दीदी संध्या पटेल जी पता नहीं कहाँ है आजकल, वो भी दिख नहीं रही है। जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और संगीता अम्बुलकर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और सुनील चौहान जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। साथ ही साथ एम डी जलील जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि हाउ आर यू, अरम आई एम वेरी स्मार्ट, थैंक यू सो मच। और एम डी गुलबाज जी जुड़ चुके हैं, तो वेलकम करते हैं। फिलहाल जितने भी दोस्त हैं सभी का वेलकम करते हैं, जो चोरी चोरी चुपके चुपके से भी सुनते हैं। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और सबसे पहले मेले चलता हूँ आपको यानी प्रियंका जी के पास। और प्रियंका जी सुनना चाहती हैं ये प्यारा सा गाना, दरवाजा बंद कर लो, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं, इन्जॉय कीजिए।

0: बिल्कुल छोटा सा घर है ये, मगर और मैं तुझको राजा मंद कर लूं और दरवाजा बंद कर लूं। एमडी गुलबाज जी देखते हैं, गुड इवनिंग। अरे एक बार तो हो गया ना। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: अर्जय मन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। प्रियंका जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और हमारे यानी प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। मैं लिखते हैं सुपर सॉन्ग जी, बिल्कुल। और आमना खान जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम एंड खुश आमदीद। यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि छोटा सा घर है ये, मगर गाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये डर मूवी का गाना बहुत शानदार लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, मुझको राजा मंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो, गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, बहुत धन्यवाद इस गाने के लिए प्रियंका जी को। और आत्मराम जी लिखते हैं कि छोटा सा घर है ये, मगर डर मूवी का गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच इन प्रियंका जी। और नंदलाल जी लिखते हैं गुड इवनिंग अमन जी, हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, सर्वजीत सेठी जी का, ये सुनना चाहते हैं भाई। अब दरवाजा बंद हो गया तो ये चाबी खोवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, चलिए चाबी खो के आते हैं, ठीक है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
2: बाहर से कोई अंदर ना आ सके,
0: बिल्कुल

0: वेलकम बैक रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। सुनील चौहान जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर गाना है। ओके जी सुनील चौहान जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है रेडियो हॉट स्टार में, जो दीवाना बना दे। और लिखते हैं कि अमन जी अगर दरवाज़ा बंद कर लेगा तो यानी अकेले डर लगेगा ना। अकेले थोड़े हैं, दुकेले हैं ना। दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। ओके जी, और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। साथ ही साथ हमारे जुड़ चुके हैं राहुल पासी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं राहुल पासी जी आपका भी। और संगीता मुर्गा जी लिखते हैं वाओ ये लवली सॉन्ग है, बाबी फिल्म का सारे गाने ही सुपर हिट जी बिल्कुल। और जलील जी लिखते हैं कि अमन जी आज की थीम क्या है? आज की थीम तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, आज के थीम दिए हैं हमारे आदरणीय अशोक देशमुख जी। और आज की जो थीम की जो यानी कि शब्द है वो है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहले है घर और मकान और बंगला, महल, दरवाजा और खिड़की और यानी उसके बाद है झरोखा और कमरा, आंगन अंगना और गली मोहल्ला, गांव और शहर, इन शब्दों पे गाने भेजने हैं। ओके, उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे। फिलहाल मैं और भी बहुत सारे मेरे पास फीडबैक हैं, तो यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और समुद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि बॉबी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। आत्माराम जी लिखते हैं कि हमारे प्यारे दोस्त अशोक देशमुख जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के अच्छे अच्छे थीम के शब्द देने के लिए, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ इतना प्यारा प्यारा थीम के शब्द देने के लिए। ओके जी, और गजानंद जी लिखते हैं कि सर्वजीत जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।
1: अर्जय अमान सर जी, अशोक देशमुख भाई जी का एप्स नहीं खुल रहा है, इसीलिए आपको व्हाट्सएप पर फरमाइश भेज दिए थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: थोड़ा क्यों नहीं खुल रहा है, थोड़ा देखिएगा। बोलते हैं बहुत ट्राई किया नहीं खुल रहा है, इसलिए
0: उनको बोलिए ना कि एक बार उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करें, शायद कुछ अगर यानी प्रॉब्लम होगा तो वो ठीक हो जाएगा। निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है भाई, एक बार एक ही मैसेज कीजिए, दो मत कीजिए प्लीज। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन जी हम भी जुड़ गए हैं आपके प्रोग्राम में, बहुत बहुत वेलकम करते हैं और श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आप सभी को भी श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और निकला जी डेनमार्क से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और खुशबू जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। खुशबू लिखते हैं नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, वेलकम है आपका खुशबू। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ अरुण मंडल जी का। अरुण मंडल जी सुनना चाहते हैं अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, और स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर। जी बिल्कुल, इंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का बहुत ही प्यारा थीम देने के लिए। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा प्यारा गाना चल रहा है। और सर्वेश भगत जी
1: आर जे अमन सर जी अरुण मंडल जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और हमारे अजय कुछ जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि यह फिल्म जब आई थी तो उस समय ऑल इंडिया स्टेट में कहीं नहीं लगे हमारे यानी रोहतक में ये अच्छा ये लगी थी। ओके अच्छा ये बात है ऐसा है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है धन्यवाद देते हैं आपका भी। और राधा कृष्ण को भी देखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड है जी बिल्कुल। और गोविंदा खंडाटे जी लिखते हैं हम भी जुड़ गए हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अरुण मंडल जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गाना प्ले करने के लिए। और आत्माराम जी लिखते हैं कि आज के थीम पर सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आज के श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अकबर खान जी जुड़ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गजानन जी लिखते हैं अरुण मंडल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ ये काजल झक्का जी का सुनना चाहती हैं ये गाना और अपने मिठू म्याजू का स्पेशली डेडिकेट करना चाहती हूँ।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और मंगे जसमूज जी देंगे। अर्जुन मन जी नमस्ते और अशोक जसमूज जी का गाना मतलब उनका थीम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और गुलबाज जी देखेंगे ये काजल झका जी के पसंद बहुत ही शानदार लगा, एकदम झकाश लगा है। और ये फीडबैक
1: अर्जय अमन सर जी काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और हुकुमचंद जी देखते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है, धन्यवाद देते हैं आपका भी। बबीता जी जुड़ी हैं, वेलकम है आपका बबीता जी आपका। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर गाना चल रहा है अमन जी अच्छा। और गजानंद जी लिखते हैं कि काजल झका जी के पसंद बहुत ही शानदार लगा है, ओके जी। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। अरुण मंडल जी लिखते हैं कि काजल जी की पसंद भोजपुरी गाना बहुत ही मस्त लागल, सुनकर मजा आ गया सुन के। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे असलम राणा जी का, असलम राणा जी सुनना चाहते हैं जरा पर्दे पर आने दे, ओके जी। तो मैं इस गाने को सुना रहा हूँ, असलम राणा जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल, फिर देख तमाशा, सच में गाना बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच असलम राणा जी और अजय भगत जी जो चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और सर्वेश भगत जी लिखते हैं कि अच्छा ये कहते हैं सॉरी,
1: आरजे अमन सर जी एमडी असलम राणा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं,
0: थैंक यू सर। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय असलम राणा जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर डुपर हिट लाजवाब गाना चला है। और असलम राणा लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद गाना सुनाने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए, गाने को पसंद करने के लिए फीडबैक सुनते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद आपका भी। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि जरा देख तमाशा वाला गाना अच्छा लगा है। और निशांत राय बोले लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो दो दोस्तों की, रुबीना नाज और रवि मोहड़े जी, ये सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना, बंगला गाड़ी झुमके कंगना। अरे नहीं दूंगा ना, सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशली और किसी के लिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और यहाँ पे निशांत राय बोले जी लिखते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त रवि महर्जी और रुबीना नाच की पसंद बहुत ही अच्छी लगी है, बंगला गाड़ी झुके कंगना। और राहुल पासे जी लिखते हैं कि दिल मत देना मेरी सौतन को, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और राधाकृष्ण गोपी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत ही प्यारा डिमांड है। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि छुपा रुस्तम का गाना बहुत शानदार लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी आपके कार्यक्रम के लिए नए लिस्नर बढ़ते जा रहे हैं और उनकी फरमाइश भी बढ़ती जा रही है, और पहले आप उन्हीं की फरमाइश पूरी कर, हम लोग अपनी फरमाइश का त्याग कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन हम फरमाइश कर देंगे और नए श्रोताओं की फरमाइश शामिल करें। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, हम हमेशा हर किसी का ध्यान रखते हैं। और काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो आर के रवि जी का है, और आर के रवि जी के साथ एक और साहब शामिल है, उन्हीं के दोस्त हैं शायद दीपक कुमार गायकवाड़ जी। ये दो दोस्तों की डिमांड अलग अलग है, अंखियों के झरोखे से मैं सुनाता हूँ इस गाने को, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल आंखियों के झरोखे से तुम बहुत दूर नजर आए हैं और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। यहाँ पे अरुण मंडल जी लिखते हैं कि आरजम अमन जी आज के सभी गाने बहुत मस्त चल रहे हैं और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया हमारे गाने को पसंद करने के लिए और फीडबैक देने के लिए। मैं रवि मोहाड़े बैतूल से।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आंखियों के झरोखे से बहुत सुपर एक्सलेंट सॉन्ग है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। साथ ही साथ यहाँ पे बाबूलाल जी ये विभूति भूषण शरण जी जुड़ चुके हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि रिक्वेस्ट करने वाले दोस्त को बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि आंखियों के झरोखे से गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक क्या कहते हैं निकलस जी?
2: माय गुडनेस आर जे अमन
0: बोलिए,
2: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओह माय गॉड आई लाइक इट, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड चॉइस, have a wonderful program today.
0: Thank you so much dear Nicholas. And यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही प्यारा डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार, बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि अगर मैं कोई मैसेज खोलता हूँ तो पीछे नहीं जा पाता हूँ। रवि जी लिखते हैं कि वाह अमन जी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए और मजा आ गया सुन के। साथ ही साथ यहाँ पे संगीता अम्बुलकर जी लिखते हैं कि हाय कितना प्यारा सॉन्ग है ये। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं सुनते
3: हैं। अमन जी आपने अपने कार्यक्रम में मेरा गाना शामिल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ रेडियो हॉट स्टार पर जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद आपका। और मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही सुपर हिट गाना लगा है। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं उनको। और आरिफ शिंदे जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, इस सुर को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये क्या कहते हैं
4: अमन भैया? नमस्कार, शुभ संध्या, प्रणाम आप सभी दोस्तों को और आपको भी। मैं जुड़ गया हूँ, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और ये जो गाना चल रहा है फिल्म आँखियों के झरोखों से, मधुर सी आवाज़ हेमलता जी की है, इनको दिल से धन्यवाद है फरमाइशकर्ता को इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए।
0: ओके जी। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि अमन जी ये जो नया ऐप आया है ना बहुत ही बढ़िया है और इसमें तो वो रेडियो की आवाज़ भी बंद नहीं होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इसमें बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं और एक और अपडेट आएगा जिसमें जो बहुत से दोस्तों के वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, जैसे वो सॉन्ग रिक्वेस्ट में चाहे मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करने में आधी जब स्क्रीन लॉक होता है तो वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो उसके लिए अपडेट किया गया है। और दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द अपडेट आ जाए बस। और ओके, अब इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, वो तीन ओके यहाँ पे तीन यानी दोस्तों का है और तीन दोस्तों में है हमारे कौन कौन से मैं बता दूँ, अजय भगत जी, आरिफ सिंधी जी और निशांत राय बोले जी। इन सभी की एक ही पसंद है मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। इंजॉय कीजिए गाने को।

0: लगा।
1: बिल्कुल, मेरा दिल एक खाली कमरा कमरे में कोई रहने लगा, और बहुत ही प्यारा गाना था ये। फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं सरोज भगत जी।
2: अजय अमन सर जी, अजय भगत जी अपने गाने में शामिल किए हैं, और दो भाई और भी हैं, तीनों भाई के मिलजुल फरमाइश में शामिल किए, तीनों भाई को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं
1: आपका। और निशांत साहब बोले, लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पाची जी लिखते हैं कि मेरा दिल है खाली कमरा, गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि मेरा दिल है खाली कमरा वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और असलम राणा जी लिखते हैं कि ये गीत जो अभी चल रहा है, ये रास्ते हैं प्यार के, ये मूवी से मेरा दिल है खाली कमरा भी मेरा बहुत ही मतलब फेवरेट गानों में से एक है। थैंक यू सो मच इस गाने को सुनाने के लिए। और मैं शिल्पा बहन लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी दिल से धन्यवाद सॉन्ग को प्ले करने के लिए। और ये क्या कहते हैं,
3: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मेरी डिमांड का गाना प्ले करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और जो श्रोता ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। अशोक देशमुख जी बहुत ही प्यारे शब्द लेकर आए हैं, और प्यारे प्यारी डिमांड श्रोताओं ने भेजी है, श्रोताओं का भी शुक्रिया, और अमन सर जी अशोक देशमुख जी का भी शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना प्यारा फीडबैक देने के लिए। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण को कहते हैं कि ये तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारा है। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका पूजा भास्कर जी। और राय पर्वत क्या कहते हैं,
4: अमन जी अजय भगत ने अपने गाने में मुझे शामिल किया, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद अजय जी को, पूरे श्रोतागण को भी लाख लाख धन्यवाद, आपको भी स्पेशल
1: थैंक यू सो मच राय पर्वत जी। और अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और देव राय लिखते हैं कि अजय भगत जी की लाख लाख धन्यवाद इतना प्यारा गाना डेडिकेट करने के लिए। निकला जी लिखते हैं वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड नंदलाल यादव जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आज का अच्छा थीम देने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारी वो सुनीता गोप जी का है, और सुनीता गोप जी सुनना चाहती हैं हंगामा हो गया, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: और हमारे आज यानी के प्रमोद जी भाई कहाँ हैं? वो दिख नहीं रहे हैं। और इनके बाद यहाँ पे देवराज जी लिखते हैं कि ये तेरे चेहरे की चमक से लगा कि बिजली ज्यादा आ गया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ये फिर गया
1: मेरा दिल एक खाली कमरा, अच्छा। कमरे में कोई रहने लगा।

0: नहीं लगा। सुपर सॉन्ग है सर जी, जिसने भी डिमांड की बहुत अच्छी की है, दिल से थैंक यू देता हूँ।
1: वेलकम है आपका भी एमडी जलील जी और राहुल पासी जी। लगते हैं कि ये यानी कि कमरा था दिल का खाली, कोई चुपके से आ गया, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। अनिल कश्यप जी जुड़ गए हैं, वेलकम है, और लिखते हैं कि वाह हंगामा हो गया, गाना अच्छा लगा है। और विभूति भूषण जी लिखते हैं कि मजा आ गया इस गाने को सुनकर। गजानंद जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: आरजे अमान सर जी, सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: ओके जी, वेलकम है जी आपका। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है आमना खान जी का। आमना खान जी, इंजॉय।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं। राधा कृष्ण कोपड़ी लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड के लिए, थैंक यू आमना जी। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और अनिकला जी लिखते हैं कि आई हैव ए प्रॉब्लम, आई कांट सेंड माई चॉइस टू मिस्टर। आपकी रिक्वेस्ट मुझे आ चुकी है लेकिन वो कब प्ले होगी मुझे नहीं पता है। ओके और गजानंद जी लिखते हैं कि आमना खान जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देता हूँ उनको। और सुनीता गोप जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन जी ये गाना मेरा भी फेवरेट है। अच्छा ओके। और ओम नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। आत्माराम जी लिखते हैं कि आमना खान जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत पसंद आई है। और अजय कुछ जी क्या कहते हैं,
1: गली गली में फिरता है तो क्यों बन के बन जा रहा, ये गाना सुपर। और इससे पहले वाला गाना चल रहा जो मेरा दिल ले खाली कमरा कमरे में रेडियो स्टार रहने लगा, ये भी गाना शानदार था।
0: थैंक यू।
1: गाने सभी लाजवाब और आपकी प्रस्तुति लाजवाब।
0: थैंक यू,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच अजय कुछ जी। और राय परवा जी देखेंगे ब्यूटीफुल सॉन्ग है बिल्कुल। और निशांत राय बोल लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। साथ ही साथ हम अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है। और अजय कुछ जी का एक और मैसेज है,
1: गली गली फिरता है तो क्यों बन के बन
0: जी, अभी तो आपने बताया ना। और ओके जी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन सर जी देखिए आप लोग मुझे ये ना कहें कि मेरा गाना प्ले कर दीजिए, जैसे ही आपका नंबर आएगा ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा प्लीज। ओके। आमना खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ वो शिवम जी के पसंद है। और शिवम जी एंजॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल जादूगर ही है और यहाँ पे निकला जी लिखते हैं वेरी ब्यूटीफुल चॉइस एंड अजय कुछ लिखते हैं सुपर सॉन्ग है जी बिल्कुल और गजानंद जी लिखते हैं कि यशोम जी का पसंद बहुत ही प्यारा है और राय पापा जी लिखते हैं वो लड़की नहीं थी जादूगरी बिल्कुल नाइस सॉन्ग है और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि गजब का सॉन्ग है अच्छा सच में कहा और ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि अमन जी नाम ही काफ़ी है आपके साथ में हो तो हर गम हंसी लगती है और दोस्ती में आप तो अब तो जिंदगी इजी लगती है ओके अच्छा ओके धन्यवाद देते हैं भाई ओम नारायण जी आपकी तारीफ के लिए और राजू सिंह जी लिखते हैं कि अर्जय अमन जी आप कैसे हैं मैं तो एकदम स्मार्ट हूँ आप बताइए आप कैसे हैं और लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ अच्छा बहुत बहुत वेलकम है आपका भी और संगीता जी लिखते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम ये गाना सुना मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसी बात पर चलिए यानी शिवम जी को बनाते हैं आज का सॉन्ग विनर बहुत बहुत बधाई हो शिवम जी और इसी बात पर अगला जो डिमांड सुनते हैं वो शाहिद अंसारी जी का सुनते हैं शाहिद अंसारी जी क्या सुनवा रहे हैं सुनते हैं इस गाने

और आज हमारे यहाँ पे यानी कि चैट बॉक्स में आरजे सोनी जी, राहुल पासी जी और पूजा भास्कर जी और गुरबाज जी और विष्णु जी सभी दोस्त यहाँ पे तहलका मचाए हुए, सभी को थैंक यू सो मच।

0: पास और यहाँ पे निशांत राय बोल लिखते हैं बहुत ही बढ़िया गाना है जी बिल्कुल। और यहाँ कुंता बेनी जी बहुत दिन बाद जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं कुंता बेनी जी। और कहाँ थी इतना दिन तक, लिखते हैं कि हेलो अमन जी गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग और आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओके जी, और ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे राय पर्वत जी लिखते हैं कि बिल्कुल नजर में रहना चाहिए। हाँ हाँ सही कहा आपने। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये गाना मैं पहली बार सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी, आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा प्यारा गाना भेजते हैं कि सच में प्रोग्राम ऑटोमेटिक खूबसूरत बन जाता है। ये सब आपके ये मतलब आप लोग इतने स्मार्ट हो, मतलब इतने आप लोग में टैलेंट कूट कूट के भरी हुई है कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है आप उस टॉपिक पर इतने अच्छे अच्छे गाने ढूंढ के लाते हो। माय गॉड, आपको मेरा सैल्यूट है, हैट्स ऑफ है, थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि शाहिद जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानंद जी लिखते हैं कि हमें शाहिद अंसारी जी की पसंद बहुत ही बेहतरीन लगी है, शाहिद अंसारी जी। और राधाकृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड, धन्यवाद देते हैं इनको। और अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी नमस्कार, मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से कुछ देर पहले से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है आपका। और आज विश्व रेडियो श्रोता दिवस है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जिस तरह से आप इतना एनर्जेटिक हो के कार्यक्रम को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये काबिले तारीफ है, और मैं बहुत बार और बार बार आपको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ।
0: लेकिन मैं बता दूं कि आज मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द है, फिर भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। ओके, मंगेश दशमुख जी लिखते हैं कि अमन जी हमें सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही पसंद आ रही है, धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी आप कैसे हैं जी, हम तो एकदम स्मार्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ ओम नारायण राय लिखते हैं कि दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर जी, बिल्कुल। और सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है। असलम राणा जी लिखते हैं कि यही तो गीत मेरी भी पसंद का था और मैं भी भेजना चाहता था, लेकिन शाहिद अंसारी ने अपनी डिमांड करके इस गीत को सुनवा दिया, उनको बहुत बहुत इंतहा दिल से शुक्रिया। एम डी जलील जी कहते हैं कि सर जी कल भी आपने ऐसा शिकायत मत कीजिए, जरूर मैं प्ले करने की कोशिश करूंगा। ये बैठे
3: मिस्टर आर जे अमन,
0: यस सर,
3: वेरी गुड इवनिंग सर,
0: गुड इवनिंग,
3: व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई नॉट यू आर सिंगिंग टुडे, आर यू फीलिंग ओके?
0: यस यस आई एम वेरी वेरी वेरी वेरी ओके। ओके, फिलहाल अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो है ये शिवम जी जो आज के यानी सॉन्ग के विनर बने हैं उनके पसंद का ये गाना है। फिर आते हैं तो अगला देनिम।

0: बिल्कुल, और मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं। राय फर्मा जी लिखते हैं कि अमन जी की दोस्ती दिल के करीब लगती है, उनकी हर बात एक हसीन नसीब लगती है, उनके साथ तो रहो तो हर शाम भी खूबसूरत लगती है। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को मिल गया है कि मेरे गली की लड़की। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये शिवम जी का गाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और शाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए और विनर भी बनाने के लिए, और सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, और मैं अपना दूसरा गाना भेज रहा हूँ। जी जी भेज दीजिए सॉन्ग रिक्वेस्ट है। ओम नारायण जी लिखते हैं कि दिल खुश हो गया गाना सुनकर, और विश्व रेडियो रेडियो यानी श्रोता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी गाने और सभी दोस्तों गाना भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आज मैं रिक्वेस्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी भी भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और गजानंद जी लिखते हैं कि मेरी गली की लड़की बहुत अच्छा गाना लगा है, और कुंता बहनी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग और ये फीडबैक।
1: Thank you so very much, Ajay Aman. Now you're singing. Now you look like radio hot star. Thank you, sir.
0: Welcome, जी. आपका इसी बात पर अगला जो डिमांड है बाबूलाल अंजाना जी का है, सुनना चाहते हैं घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर, सच में.

बिल्कुल घर से निकलते ही ओ माय गॉड मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। और राहुल पासी जी लिखेंगे घर से निकलते ही ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और एमडी जलील जी लिखेंगे बहुत ही प्यारा गाना है घर से निकलते ही, जी बिल्कुल। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि वाओ सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है। और संगीता अम्बुलकर जी लिखते हैं वाह बहुत ही अच्छा गाना लगा है मुझे ये। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा ये गाना। और कुंता बहन जी लिखते हैं कि इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए बहुत बहुत बाबूलाल अंजन जी को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे शैलेंद्र बुंदेले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है शैलेंद्र बुंदेले जी आपका। राय परवा जी लिखते हैं कि आपकी मुस्कान पे दिल हार बैठे, आपकी एक नज़र में अपना जहां देख बैठे, और पता नहीं चला कब आपसे प्यार हम कर बैठे, आहा क्या बात है। बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि सभी दोस्तों का धन्यवाद देते हैं और फीडबैक देने वाले दोस्तों का भी धन्यवाद। रवि महाराज लिखते हैं कि ये फिर

0: और अभी सॉन्ग चल रहा है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती हो खिड़की से आई नजर। बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग सभी।
1: ओके जी, और यहाँ पे अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं?
2: लड़की है जैसे
1: अच्छा।
2: कोई पहेली, कल जो मिली मुझको
1: अच्छा अच्छा
2: उसकी सहेली, मैंने कहा उसको जाके ये कहना अच्छा नहीं है यूं दूर रहना, जिसे प्यार करता हूँ मैं जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर।
1: तो बता दीजिए, हमें तो डर लगता है।
3: बहुत ही बढ़िया गाना, मजा आ गया सुन के। पापा कहते हैं मूवी से ये बहुत ही शानदार फरमाइश थी।
1: बिल्कुल, लेकिन आज हमारी हिमेश जी की बहन दिखाई नहीं दे रही है, पता ना वो कहाँ गायब है आज। और सुनील चौहान जी लिखते हैं कि ये गाना अमन जी बहुत अच्छा लगा है, फिलहाल अगला जो डिमांड है वो यानी कि कायनात जी का है, और कायनात जी सुनना चाहती हैं बहुत ही प्यारा गाना तेरे मोहल्ले में। इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये कैना जी की पसंद बहुत ही अच्छी लगी है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है, धन्यवाद देते हैं आपको। और ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि वाह सुपर डुपर हिट सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे सुनील चौहान जी लिखते हैं कि हम लुट गए तेरे मोहल्ले आके, अच्छा गाना लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि हम लुट गए तेरे मोहल्ले, शानदार गीत सुनने को मिला गया। इसी बात पर शाहिद जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। इस गाने के बाद आरजे सोनी जी का गाना प्ले करूंगा मैं।

0: तो हवा झुरु झुरु लगला। फिलहाल फीडबैक शामिल करता हूँ, आरजे रत्ना जी जुड़ी है बहुत दिन बाद।
1: हेलो नमस्ते एंड गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी और रेडियो हॉट स्टार के सभी दोस्तों को भी आरजे रत्ना का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज बहुत ही खुशी का दिन है, तो ये खुशी का दिन हमें आपसे बातें करने के लिए मजबूर कर रहा है और आज बहुत ही बिजी वक्त में से वक्त निकाल के हमें आना ही पड़ा।
0: अच्छा।
1: आप सभी के लिए शुभकामनाएं लेकर। आप जानते हैं आज श्रोता दिन है और श्रोता जगत के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है, तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ दोस्तों, आप सुनते हैं इसलिए हमारी आवाज़ जिंदा है। रेडियो के इस सुरीले सफर में कई आवाजें मिलती है, कई शब्द कानों तक पहुँचते है, कई दिल को छू जाते हैं, लेकिन इस पूरे सफर को अर्थ मिलता है आपसे, हमारे प्यारे श्रोताओं से। हम स्टूडियो में बैठकर ना सिर्फ बोलते हैं और हमारे शब्दों को आपके घर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। आप हमें देख नहीं पाते, हम आपको देख नहीं पाते, फिर भी आवाज के इस अदृश्य धागे से हमारे बीच एक बेहद खूबसूरत सा रिश्ता बन जाता है। कभी कोई गीत आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है, कभी कोई विचार मन को नई ऊर्जा देता है, कभी किसी कार्यक्रम से नई जानकारी मिलती है, तो कभी सिर्फ रेडियो की आवाज ही अपनेपन का एहसास करा देती है। और हाँ दोस्तों, रेडियो सिर्फ एक आवाज नहीं, रेडियो दिल से जुड़ा हुआ एक रिश्ता भी है और इस रिश्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा है आप, हमारे श्रोता। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके पत्र, आपके फोन, आपकी सराहना और कभी कभी दी गई आपकी छोटी सी सलाह भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हर बार माइक के सामने बैठे हुए मन में एक ही विचार आता है, कहीं दूर मेरा कोई श्रोता मुझे सुन रहा है, और यही भावना हमें बार बार बोलने की प्रेरणा देती है, नए नए विषय आपके सामने लेकर आने का हौसला भी देती है। आज रेडियो श्रोता दिवस के अवसर पर अपने सभी श्रोता मित्रों से बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप सुनते रहिए, हम बोलते रहेंगे, आपका साथ बना रहे, हमारी आवाज आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि तरंगे भले ही हवा में हो लेकिन रिश्ता तो दिलों का है। आवाज हमारी भले हो लेकिन उसे अर्थ देने वाली दुनिया आपके प्यार की है। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को रेडियो श्रोता दिवस की दिल से, प्रेम से और मन की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारा यह रिश्ता यूं ही बना रहे, आवाज और श्रोता के बीच का यह खूबसूरत संवाद आने वाले अनेक वर्षों तक यूं ही चलता रहे। आपका साथ, हमारी ऊर्जा और रेडियो का यह सुरीला सफर ऐसा ही चलता रहे और आपका प्यार यूं ही बना रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना प्यारा सा नाम दिया है, आरजे अमन सर जी ने मुझे इतना प्यारा सा नाम दिया है आवाज की मल्लिका, इस बात को मैं आखिर तक नहीं भूल पाऊंगी। और अमन सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू,
0: वेलकम जी, और इतने प्यारे फीडबैक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओम नारायण राय लिखते हैं कि थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना, वाओ सुपर डुपर हिट सॉन्ग सुनने को मिल गया आज मुझे। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये शाहिद जी के पसंद, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा दीवाना, बहुत ही अच्छा लगा है। बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि ये शाहिद जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और संगीता मुल्का जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, ये तो डांसिंग सॉन्ग है, मजा गया सुन के। और दीपक कुमार गायकवाड़ लिखते हैं कि कोई बोले वंडरफुल हो, कोई बोले ब्यूटीफुल हो, कोई बोले मजा आ गया, तो कोई बोले आनंद आ गया, कोई बोले बहुत शुक्रिया, और कोई बोले धन्यवाद, तो कोई बोले थैंक यू वेरी मच। जब बजे अपनी फरमाइश रेडियो हॉट स्टार पर, तो सब बोले रेडियो हॉट स्टार वाह जो दीवाना बना दे, धन्यवाद उसी बात पर। और यहाँ कुंता मैंने लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और रवि मार जी लिखते हैं कि मैं झूम रहा हूँ, थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना, अच्छा सच में कहा। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया गाना लगा सुनकर और मजा आ गया। राहुल पासी जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का डिमांड मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा, धन्यवाद देते हैं उनको, ये फीडबैक सुनते हैं।
2: कि मारे मुस्की बलम दुख भागेला, तमरा राजा के दुताला पर डबल खिड़की हवा झुरु झुरु लागेला।
0: ओके जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो तीन दोस्तों की है, हमारे सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी और आत्माराम पाटिल जी, सुनवाते हैं।
3: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है बोल रहा था बोला, गाने का बोला मैं हूँ गाँव की बोरी बाबू रंग लहरी। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत अदरजन रहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, अंद्र प्रकाश, सुनील कुमार, मुनि कुमारी, सुरेश कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मुनत जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे रत्ना जी, आर जे एमएस परमार जी, आर जे बंसिका जी, और सभी आर जे, आर सभी भाई, आर सभी बहन, आर सभी लिसनर इसमें शामिल, सभी को सुनाइए। जय राम जी
0: की, सुना दिया, एंजॉय कीजिए आप सभी के पसंद।

0: वेलकम बैक। मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि अमन जी कभी कभी नेटवर्क छोड़ा है। अच्छा कोई बात नहीं है। और गजानंद जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी, सरोज भगत जी और सभी के पसंद बहुत ही बेहतरीन लगी है जी बिल्कुल। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा तीन भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और हम
0: जी,
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और ओम नारायण जी लिखते हैं कि ये सर्वेश भगत जी आपकी पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगी है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। साथ ही साथ राहुल पासी जी लिखते हैं कि बोल राधा बोल वाला का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आवाज़ की मलिकार जी रत्ना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, और बहुत दिनों बाद मैं सुन रही हूँ, बहुत बढ़िया फरमाइश है ये तीनों दोस्तों की, मैं हूँ गाँव की गोरी अच्छा लग रहा है। और नंदलाल जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंगी लहरी, जरा मुझको भी पढ़ी ना सिखा दे तू। बहुत लाजवाब गाना सर्वेश भाई के, सभी दोस्तों के लिए ये गाना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी। और हमारे यानी कि पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और गजानंद सरकार जी देते हैं आदरणीय आरजे आवाज़ की मलका आरजे रत्ना जी के पास ये फीडबैक मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और किशन पाल जी लिखते हैं कि सुपर प्रोग्राम चल रहा है, धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वह हमारे अकबर खान जी का है, और अकबर खान जी के साथ में शायद कोई और भी होगा, मैं कैसे फिलहाल मैं चेक करूँगा उसको, लेकिन अकबर खान जी सुनना चाहते हैं अंगना में बाबा द्वार पे माँ। इन्जॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते, बहुत सारे फीडबैक भी है मेरे पास आए हुए हैं। कैसे बच्ची लिखते हैं कि मस्त गाना लगा एकदम, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि आरजे रत्ना जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा है, और गजानन जी लिखते हैं कि दोस्त अकबर खान जी के पसंद आखिर फिल्म का शानदार लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और चल जा भाई पीछे। हाँ, और यहाँ पे मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि अर्जमन जी हम सबकी फरमाइश को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें आप भी थे? मैं वही तो यानी मैं बोल रहा था कि इस गाने में कोई और है। ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है कि आप भी इस गाने में शामिल थे, क्योंकि मैं आपका नाम भूल गया था। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिला दिया। और फिकू राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लेकिन लिखते हैं कि अकबर जी के पसंद मुझे एक नंबर लगी है। राहुल पासे जी लिखते हैं कि अंगना में बाबा द्वारे में माँ गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और किशन पाल सके लिखते हैं कि फरमाइश कितने बजे तक की जाती है? फरमाइश तो अब इन लाइव शो में की जाती है, बिल्कुल। रवि मोहन जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: ए अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, ए अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ।
2: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे परम मित्र अकबर खान जी का, मजा आ गया गाने में। और इससे पहले तीनों दोस्तों की वसंत चली, वो भी सॉन्ग एक नंबर था।
0: हो गया
2: ABCDEFGH, तुझको पढ़ना सिखा दूं। अच्छा, मैं हूँ गांव की गोरी, लाजवाब सॉन्ग। सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक सॉन्ग चल रहा है सर जी, इसीलिए कहता हूँ मैं, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार हमारे प्यारे प्यारे आरजे अमन खान सर जी के साथ।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद आपका भी। और राधिका सिंह को देते हैं सुपर सॉन्ग के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और जुड़ चुके हैं ये भागेश्वर निषाद जी। जी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई, यानी कि भागेश्वर निषाद जी आपका रेडियो हॉट स्टार में स्वागत है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अकबर जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। ओम नारायण आय लिखते हैं कि अमन जी आए तो वक्त भी रुक जाए, आपकी एक बात पर हजारों दिल झुक जाए, नाम ही काफ़ी है सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि आप हो तो हर दिन फेस्टिवल है। थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है। अच्छा, यहाँ पे कुंता बेनी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर डिमांड थी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, सुन के मज़ा आ गया है। दो दोस्तों की डिमांड है, हमारे हुकुम चंद जांगड़ जी का है और एक नाम है सुनील कुमार जी, बांका बिहार वाले। क्या कहते हैं जरा उनका सुनते हैं।
3: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से। आज मैं एक गाने की फरमाइश करना चाहता हूँ। गाने के बोल हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और ये गाना अमिताभ बच्चन की मधुर आवाज़ों में गाया हुआ है।
0: अच्छा, अच्छा,
3: और ये गाना फिल्म है लावारिस, और ये गाना पहले तो आपको डेडिकेट है, और आपकी सुंदरता की मूर्त को, वंशिका जी को, परमार जी को, आकांक्षा जी को, सोनू गौतम जी हैं, प्रिंस पासवान जी हैं, मुक्तिनाथ जी और सतीश शर्मा जी, परवेज अहमद जी, नेकलस जी, अरुण मंडल जी और रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद।
0: ओके, एंजॉय कीजिए गाने को प्ले कर दिया।

0: बिल्कुल आप सुन रहे हैं रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक जी मेरे पास आ चुके हैं। मैं जनन जी लिखते हैं कि ये सुनील जी और हुकुम खान जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको। और यहाँ ये लिख के पीकुरा जी लिखते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: हरे अंगना में बाबा
0: अच्छा
1: द्वारे पे माँ, हे अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आई गोरी हम तोरे घर माँ, हे अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आई गोरी हम तोरे घर माँ। लाजवाब सॉन्ग अमन जी मेरी पसंद सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।
0: okay,
1: और जितने भी दोस्त फीडबैक दिया उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और शुक्रिया।
0: ओके जी वेलकम है आपका भी। और साथ साथ यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गाना बहुत अच्छा लगा है। ओम नारायण राय लिखते हैं कि तारीफ नहीं करोगे बीबी क्या तो लाठीचार्ज हो जाएगा। अच्छा एम डी जलील जी लिखते हैं कि गजब सॉन्ग है सर जी, अच्छा सच में कहा। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि मेरे रेडियो हॉट स्टार में गाना ही गाना है, इस डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। दीपक कुमार गायकवाड़ जी का
2: मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये गाना ऐसा है कि पूरे बॉलीवुड में आज तक ऐसा कोई गाना नहीं बना है मेरे अंगने में।
0: बिल्कुल ओके धन्यवाद देते हैं आपको। अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं लिखते हैं एब्सोल्युटली मेलोडियस सॉन्ग है जी बिल्कुल। और आवाज़ की मलके आर जे रत्ना जी लिखते हैं कि आज की थीम बहुत मज़ेदार है, एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिल गए जी। मैं एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा अशोक देशमुख जी का इतने प्यारा थीम देने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है ओम नारायण राय जी का है, सुनना चाहते हैं गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया।

0: वेलकम बैक, फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। गजानन जी लिखते हैं कि कोई तरह गांव बड़ा प्यारा गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा यशुदास की आवाज में। और पीपुरा लिखते हैं कि आज रेडियो श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दोस्तों को। अकबर खान जी क्या कहते हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम अमन
0: जी।
1: लाजवाब सॉन्ग चल रहा है।

0: सादा चंद्रमा जो आधा आधा जवारे आधा जवारे।
1: लाजवाब सॉन्ग
2: बिल्कुल। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये बुरी तरह गाँव बड़ा प्यारा गाना, बहुत अच्छा लगा है। ओम नारायण जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। राधा कृष्ण को लिखते हैं वाह क्या खूबसूरत डिमांड है, बहुत थैंक यू सो मच इस गाने के लिए और ये फीडबैक।
3: ये तो बात बिल्कुल ही सही है कि जहाँ गोरी रहेगी वही गाँव प्यारा लगेगा, और बहुत ही सुंदर गाना गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, और बहुत मजा आ रहा है ये गाना सुन के केजे यशुदास की आवाज में। थैंक यू सर बजाने के लिए।
2: ओके, इसी बात पर दो दोस्तों की डिमांड है, यानी कुंता बेनी जी और अब्दुल जब्बार अंसारी जी सुनना चाहते हैं ये खिड़की जो बंद रहती है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: को लिए खिड़की जो बंद रहती है, वैसे राहुल पासी जी लिखेंगे, बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं, ये खिड़की जो बंद रहती है। और बाबूलाल जी लिखेंगे, दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत अच्छी लगी है। और जलील जी क्या कहते हैं,
1: मेरी दुश्मन है ये।

0: मोहम्मद रफी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सॉन्ग है सर जी, ओल्ड इज गोल्ड। थैंक यू,
1: वेलकम जी आपका जलील जी और गजानन जी लिखते हैं ये कुंता बिनी जी और अब्दुल जब्बार जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। और ये फिर
2: आरजे अमन सर जी, कुंता बिनी जी, एक भाई और भी हैं।

वेलकम है रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना रहा है। और फिर लिखते हैं कि ये नीचे फूलों की दुकान गाना मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर पर लिखते हैं कि अमन जी आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि कल का गाना मेरा गाना बहुत अच्छा लगा था, धन्यवाद देते हैं। ओके जी। और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और कुंता जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि नीचे फूलों की दुकान वाला गाना बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो गजानन सुरकार जी के ग्रुप का है, और ये शहर है अमन का, मतलब यानी मेरा शहर है। इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल यहाँ पे सब शांति शांति है। वैसे फीडबैक भी बहुत आ चुके हैं और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मस्त सॉन्ग चल रहा है और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये राज फिल्म का शानदार गाना मुझे सुनने को मिल गया, मजा आ गया है। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, गजानंद सलोकर जी का पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए, सभी को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं,
0: थैंक यू का भी। और ओम नारायण जी लिखते हैं कि अमन जी टॉप 10 का लॉटरी होगा। जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, वो तो डेली होता है। और पीपल आई जी लिखते हैं कि ये नींद ये पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये शहर है अमन का बहुत ही बढ़िया गाना है, मजा आ गया सुन के। और ये फीडबैक,
2: ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है।
0: बिल्कुल। और यहाँ कुंता बेन लिखते हैं कि आदरणीय गजानन सलोकार जी के ग्रुप की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं इनके प्यारे डिमांड के लिए। अजय भगत जी लिखते हैं कि ये सच में ये शहर है तो आप ही का है यानी अमन जी का, और नाइस सॉन्ग है, थैंक यू सो मच जी। और आमना खान जी लिखते हैं कि ये हॉट स्टार है आरजे अमन जी का और इनकी अदा है निराली, थैंक यू सो मच आपके इतने यानी प्यारे अल्फाज के लिए। इसी बात पर यानी कि हम अपने यानी कि प्रमोद जी का गाना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए प्रमोद कुमार जी।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और मिसाल अंगद जी लेते हैं कि हमारे दोस्त गजानन सलोकार जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है। और गजानन जी से दरियामन जी को प्यार भरा नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये प्रमोद जी की पसंद बहुत शानदार लगी है। और अजय कुछ जी लिखते हैं कि मैंने भेजा जी, तो आपने भेजा है लेकिन मुझे ये नहीं पता है वो कौन सा गाना है और कौन सा यानी फिल्म का गाना है। सिर्फ आपने लिख दिया गांव की गोरी बपिलरी, ऐसे थोड़ा ना कोई गाना मिल जाएगा। कम से कम फिल्म का नाम ये इस तरह से तो मुझे कोई गाना मिलेगा नहीं। आप हो सकता है अगर नहीं कुछ तो वहाँ पर लिख डाल सकते हैं ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। और पीकुराय लिखते हैं कि ये गाना अच्छा लगा, मैं आपके गाने को कैंसिल कर रहा हूँ अजय कुछ जी। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि इतना अच्छा आज के थीम देने के लिए अशोक देशमुख जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नारायण राय लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कुंता बहन लिखते हैं कि भाई प्रमोद जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे किनका है। ओके, अगला जो डिमांड मैं प्ले कर रहा हूँ ये हमारे अनिल कश्यप जी का है। अनिल कश्यप

वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। परमल को लिख देंगे थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि अनिल कश्यप जी की पसंद मुझे पसंद नहीं है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि अब तो देर हो चुकी है। और अभिकुल राय जी लिखते हैं कि जरूर ये जाकिर जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि इस गाने के डिमांड के लिए जाकिर खान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि भोजपुरी गाना तो हमेशा आग लगाती है, यानी कि सैटरडे को सुनिए 1:30 बजे से। जाकिर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और अजय कुछ लिखते हैं थैंक यू सो मच आपका भी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो MD जलील जी का मैं प्ले करने वाला हूँ। जलील जी इंजॉय कीजिए।

0: तुझे याद।
1: और बता दूं कि स्टार ऑफ द वीक में हमारे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, ये सभी हो चुके हैं। अगला स्टार ऑफ द वीक यानी कि कल कौन होना चाहिए जिसके गाने बेहतरीन बेहतरीन हो और पूरा मतलब समझिए कि धमाल मचा दे, तो अपनी राय जरूर दे हमें अभी। और फिलहाल अगला गाना मैं प्ले करूंगा फीडबैक के साथ। ओम नारायण जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा, नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया। जाकिर जी लिखते हैं कि फीडबैक देने वाले दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा, मजा आ गया सुन सुन के। और अपी कुराय लिखते हैं कि अमरी जलील जी का भी पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज का भी प्रोग्राम एक नंबर हुआ है, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और कुंता बिनी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और एमडी जलील जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अजय जी लिखते हैं कि ये मज़ेदार सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है राहुल पासी जी का है, सुनना चाहते हैं गली में आज शाम निकला, इन्जॉय कीजिए।

ओके हमारे असलम राणा जी ने राय दिया है कि अजय देवगन को लाइए। ओके जी, और विष्णु चंद्र जी यानी कृषि कपूर को फिलहाल मैं चलूंगा अजय देवगन जी के साथ चल रहा हूँ। तो चलिए अगले हफ्ते के यानी कि अगले दिन के हमारे स्टार ऑफ द वीक रहेंगे अजय देवगन जी।

0: बिल्कुल गली में चांद तो निकल चुका है और ओम नारायण आय लिख देंगे, बहुत ही प्यारा गाना है जी बिल्कुल। और राहुल पासी जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। और पीकू राय जी लिखते हैं कि गली में चांद निकला बहुत ही प्यारा गाना है जी बिल्कुल। और अशिल्पा बेन लिखते हैं कि गली में चांद निकला ही सुपर एक्सीलेंट सॉन्ग चल रहा है। रवि महर्जी लिखते हैं कि अजय देवगन जी बिल्कुल, आपने भी कह दिया है तो चलिए अजय देवगन को ही लव किया जाता है। और क्या कहते हैं इनको
1: अमन सर जी, नमस्ते
0: नमस्ते।
1: कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है, सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो मेरा ये सुझाव है स्टार ऑफ द वीक में कभी पुराने कलाकारों को लाया जाए, जैसे राजेश खन्ना जी, अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, सुनील दत्त जी, संजीव कुमार जी और धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, माला सिन्हा जी, विजयंती माला जी, जयप्रदा जी, इनमें से किसी एक को लाया जाए।
0: ओके, लेकिन फिलहाल अभी चल रहे हैं हमारे पास हीरो वाले, यानी कि कैटेगरी चल रहे हैं, तो सिर्फ हीरो वाले में अभी तो अजय देवगन को चुन लिया गया है, अगले हफ्ते इसके लिए विचार किया जाएगा। ओके, हमारे असलम राणा जी बताएंगे तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है फिलहाल, यानी कि और भी कोई भी बता सकता है, नो प्रॉब्लम। और जिनके एक्टर मतलब यानी कि उनके लिए कि उनके गाने सबसे अच्छे हैं और प्रोग्राम में समझिए कि मतलब धमाका हो जाएगा, तो समझिए कि उस एक्टर को जरूर हम लोग लाएंगे। ओके, अगला जो डिमांड है वो शिल्पा बेन जी का, शिल्पा बेन जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और लॉटरी में नाम आया है शिल्पा बेनी जी का। ओके, यानी कि मतलब शिल्पा बेन जी, मैं आपको कॉल लगाऊंगा, आप अपने ऐप को अपडेट कर लीजिएगा प्लीज, अगर नहीं की होंगी तो, नहीं तो मैं मुझे दोबारा लॉटरी निकालना पड़ सकता है। और ओम नारायण जी लिखते हैं कि नाइट सॉन्ग चल रहा है। ओके, और राहुल पासी जी लिखते हैं कि सजन घर आना था, गाना अच्छा लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल। और अजय कुछ जी लिखते हैं कि जसपाल सिंह की और यशोदा जी की जोड़ी अच्छा, ओके ठीक है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए। और शिल्पा बेन जी बताइएगा जरूर कि आपने एप्लीकेशन अपडेट कर लिया है तो बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कॉल लगाऊंगा, क्योंकि जब तक अब ऐप अपडेट नहीं होगा तब तक आपके पास कॉल नहीं जा सकता है। ओके, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, और तो फिलहाल अभिषेक तिवारी जी का सुनवाता हूँ। अभिषेक तिवारी जी।

0: चूना लगाया।
1: Oh my God.
0: हाय हाय मैं छुरन चटाए।
1: नींद के मारे फिलहाल। और यहाँ पे कुंता बेन जी लिखते हैं कि ये शिल्पा बेन जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया था, धन्यवाद देते हैं उनको। और फिर कुराई लिखते हैं कि अभिषेक तिवारी जी गाना भी अच्छा लगा है। और यहाँ पे देवराज जी लिखते हैं कि मेरा भाई का बर्थडे है, उसका नाम यानी विक्की है। ओके, तो भाई यानी कि विक्की जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल और आपको वो तमाम वो खुशियाँ हासिल हो। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि ये टिकटक टिकटक वाला गाना मुझे अच्छा लग रहा है। और संगीता मुर्गा जी फिर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी अब। और यहाँ पे राधा किशन को लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और राहुल पाचित जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगला जो डिमांड है वो गोविंदा खंडादे जी का है। गोविंदा खंडादे जी सुनना चाहते हैं ये गाना।

बिल्कुल अगला जो डिमांड मैं प्ले कर, इसके बाद मैं यानी कि कॉल लगाऊंगा शिल्पा बहन जी को, और विष्णु अगला जो डिमांड है वो भी यानी कि विष्णु चंद्र जी का है, और विष्णु चंद्र जी इंजॉय कीजिए गाने को।

0: वेलकम बैक और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि आरजी अमन जी प्रोग्राम बहुत शानदार चला है, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और पीकू राय जी लिखते हैं कि गली गली वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये फीडबैक,
1: एक सुपरहिट प्रोग्राम की यही खास बात है कि उसे सुनते सुनते कब समय निकल जाए पता ही नहीं चलता। अमन जी आपके प्रोग्राम में यह खास बात है और आपको बहुत बहुत बधाई हो।
0: थैंक यू सो मच सर जी आपका। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये विष्णु चंद्र जी का गाना मुझे बहुत ही लाजवाब लगा है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं सुपर डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और संगीता मुल्का जी लिखते हैं कि ये कितना सा गाना है, मेरी फरमाइश का गाना नहीं, अगला आप ही का रिक्वेस्ट है, लेकिन पहले यहाँ पे शिल्पा बेन जी को मैं कॉल लगाता हूँ, आई होप इनसे बात हो जाए मेरी। बहुत बहुत वेलकम है आपका शिल्पा बेन जी, कैसी हैं? हेलो,
2: बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत अच्छा हूँ।
2: आवाज नहीं आ रही है आपकी?
0: जी आवाज तो आ रही है मेरी।
2: हाँ जी आपकी आ रही है।
0: ओके जी, आपकी भी आवाज आ रही है मुझे, बिल्कुल अच्छी से आ रही है। तो बताइए शिल्पा बेन जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, और आज आप क्या सुनना चाहेंगे ये बता दीजिए।
2: थैंक यू। वो जब भी मेटका आओगे तुम
0: जी,
2: हाँ जब भी मेट फिल्म है ना, हाँ उसका गाना आओगे जब तुम,
0: आओगे जब तुम,
2: हाँ हाँ
0: ओके मैं देखता हूँ, जब भी मैं गाने को निकालता हूँ। और कुछ आप नीचे कहना चाहेंगे?
2: जी नहीं, आज वो श्रोता दिवस है तो सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
0: ओके धन्यवाद। तो आपका गाना प्ले कर दूँ?
2: हाँ जी
0: ओके, एंजॉय कीजिए, मैंने गाना प्ले कर दिया।

घर बहुत हसीन है आपका। संगीता मुर्गा जी, मैंने आपका घर देखा भी है, आपने मुझे वो वीडियो भेजा था ना, सच में आपका घर बहुत प्यारा है। हर चीज को आपने बहुत ही यानी कि करीने से सजा कर रखा है।

रामन सर जी आज की जो थीम चॉइस है, तो आज के सभी शब्द बहुत अच्छे हैं। जिसने भी ये शब्द आपको सुझवाए है, तो मैं इनका पहले अभिनंदन करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे शब्द उन्होंने दिए हैं। तो अमन सर जी, आज मैं सभी शब्दों को हटाकर सिर्फ झरोका इस शब्द को मैं चुनूंगा, और अमन सर जी मुझे गाना सुनने का है। दिल के झरोके में आजा, चंदा सा मुखड़ा दिखा जा, यही गाना सुनने का है, और फिल्म का नाम है दिल के झरोके में। अमन सर जी, ये गाना मैं सबसे पहले आपको डेडिकेट करूंगा, फिर आपकी सुंदरता की मूरत, फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, सर्वेज भगत जी, फुले भक्त संजीव भाऊ जी, जो आपकी तरफ से छत्तीसगढ़ भिलाई में आपकी तरफ से अवार्ड उनको मिला है। अमन सर जी, मुझे बहुत अच्छा हुआ कि मेरे दोस्तों को आपने नाम सुझवा कर आपको अवार्ड दिया है। फिर फुले भक्त संजीव भाऊ, हीरामन खिराड़े जी, मोहन न्यावरे जी, अमोल कांबरे जी, आनंद कुलकर्णी जी, आरजे आकांक्षा जी, वंशिका जी और आदरणीय बबीता जी, इन सभी को मैं ये गाना सुनवाना चाहता हूँ आज की थीम चॉइस पर आधारित। तो अमन सर जी, गाना सुनवा दो, और गाना सुनवाते समय आप इस गाने की पंक्तियाँ ज़रूर गाना, क्योंकि इस गाना आप जब गाओगे तो गाने की खूबसूरती और ही बढ़ जाएगी। अमन सर जी, मेरे आपको स्पेशली ये दरख्वास्त है, तो गाना सुनवा दो।

और बबीता जी से नंबर से आपने जो गाना भेजा है बबीता जी, वो आपने गलत गाना भेज दिया है। आपने भेजा है यानी खिड़की वाली, और आपने उसमें लिखा है यानी खिड़की वाली, तो यानी खिड़की वाली कोई गाना नहीं है, यानी खिड़की वाली तो कल फिर आना वो गाना है, वो गलत गाना आपने भेज दिया, इसके लिए सॉरी, इसीलिए आपका गाना प्ले नहीं हो पा रहा है। कुंता जी लिखते हैं कि अमन जी आज का प्रोग्राम शानदार लगा है, और अशोका बेन जी लिखते हैं कि जिनके घरों से मेरा गाना अच्छा लगा। इसी बात का अगला जो डिमांड है वो खुशबू का है, और खुशबू इंजॉय कर।

के और आखिरी गाना मैं प्ले कर रहा हूँ डियर यानी कि यहाँ क्या नाम उनका डेनमार्क से सुनवाते हैं उनके गाने को और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाज़त। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक ले शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब बखैर, बाय बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: दो पड़ोसियों से,
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया,
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: रोजी, ए रोजी, रोजी, पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस, यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे।